0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
2: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामान नाजरीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदर आपकी आवाज के स्टूडियो से पेश किया जा रहा है। आप सबकी बात सुनते रहते हैं, सियासी तौर पर भी बात सुनते रहते हैं, सियासतदान अपनी बात करते रहते हैं। आज हमारे साथ वो सियासतदान हैं जो डेनमार्क की सियासत को उन्होंने आजकल फोकस किया हुआ है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबल जो है वो डेनमार्क का है, डेनमार्क की सियासी पार्टियों की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ सरपरस्त आला चौधरी शौकत साहब जो है वो बरतानिया की फिजाओं से हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपको बरतानिया की फिजाओं से कोपेनहेगन की फिजाओं में खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब, आपका और आपके चैनल का और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: चौधरी साहब, आप किस सिलसिला में गए हैं, कुछ सियासी मीटिंग के सिलसिला में गए हैं या कि वैसे भी गर्मी इंजॉय करने गए हैं?
2: नहीं राय साहब, मैं एक अपने गैदरिंग, अपने इवेंट था हमारा शादी का, फैमिली का, तो मैं उधर आया हुआ था। दो तीन दिन हो गए हैं शादी के सिलसिले में इधर आया था, क्योंकि हमारी फैमिली की एक शादी थी इधर लंदन में, तो उस सिलसिले में आया था शादी पे।
1: लेकिन चौधरी साहब, जो हमारे पास खबरें हैं, कुछ सियासी मीटिंग भी होनी है कुछ लीडरान के साथ, इसकी कोई ब्रेकिंग न्यूज दे ना।
2: कोई ऐसी बात नहीं है राय साहब, आपको पता ही है, मैं तो आपको पता ही है आस्ता आस्ता खुली किताब की तरह ही होता हूँ, तो कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह जो होगा फिर आपको, पहले आपको ही बताऊंगा कोई सिलसिला इस तरह होगा
1: तो इसका मतलब है कोई बात है। चले चौधरी साहब, मौसम कैसा है बरतानिया का?
2: माशाल्लाह जी, मौसम बहुत, कल तो बहुत अच्छा था मौसम, टेम्परेचर भी बेहतरीन था और जो है ना गर्मी भी थी। आज थोड़ा सा जो है ना धूप नहीं है, लेकिन टेम्परेचर नॉर्मल ही है, गर्मी की तरह टेम्परेचर है, 25-30 बस इस तरह का है, 23-25 के लगभग है टेम्परेचर। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मौसम है जी इधर।
1: तो चौधरी साहब, सियासी माहौल को किस तरह फील कर रहे हैं बरतानिया का?
2: वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं ये लोग, बड़े अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे हैं, कोई इस तरह का कोई का वो इशू नहीं होता, लेकिन ये सब मिलके काम करते हैं और एक दूसरे के साथ जो है ना रابطे रखते हैं, एक दूसरे को साथ लेके इज्जत और इत्राम के साथ सब दोस्त भाई चलते हैं।
1: तो जो सब इज्जत इत्राम से ही चलना चाहिए, इसीलिए वो लोग तरक्की करके आगे निकल चुके हैं ना, तो हम अपने कानून ज्यादा अपने ऊपर सख्त करवाते जा रहे हैं।
2: जी बिल्कुल राय साहब, यही है, हम जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को इज्जत नहीं देंगे, एक दूसरे को साथ नहीं लेके चलेंगे, तो ये हम आगे तरक्की नहीं कर सकते, ग्रुप बंदियां ही होती रहेंगी। तो ये सबसे यहाँ मैंने देखा है कि जो पार्टियां होती हैं वो अपने दोस्तों को, अगर वो एक दूसरे के साथ को आगे पीछे भी होते हैं तो वो दूसरों को बुला के कहते हैं यार इनको साथ मिलाए ताकि हमारी पार्टी मजबूत हो, हमारी पार्टी एक बड़ा धड़ा हो, तो जो अपने साथी है उनको छोड़ के नहीं जाते। ये सब जो साथी पुराने भी होते हैं उनको भी साथ लेके चलते हैं, कहते हैं कि हमारी तादाद ज्यादा होगी, हमारी पार्टी बड़ी होगी और हमारे लिए रिस्पेक्ट होगी। तो ये दो चार बंदे हम खड़े होके कहें कि हम पार्टी है हमारी, तो इस तरह से इज्जत नहीं बनती। तो ये लोगों का मौकफ और तरह से होता है, ये सब दोस्तों को देखा है मैंने, ये सबको साथ लेके चलते हैं।
1: चलिए साहब, आपका बहुत शुक्रिया, चूंकि आप काफी मसरूफ है मेहमान आपके पास बैठे हुए, इंशाल्लाह आप जल्दी वापस आ जाएं।
2: जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी राय साहब, जब आएंगे इंशाल्लाह रब्ता होगा।
1: सामान्य नाजरीन, ये थे चौधरी शौकत सरपरस्त आला जिनकी आप बात सुन रहे थे। सामान्य नाजरीन, हमारा किसी मुतफिक होना जरूरी नहीं है।
3: सामान्य कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान। सामान्य नाजरीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर रास्ता आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हमारे साथ हमारे थिंक टैंक सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब मौजूद हैं जो आपको मौसम का हाल, डेनमार्क की खबरें, लोकल खबरें और दाएं बाएं के हालात पर भी रोशनी डालेंगे, फिर उनसे बातचीत भी करेंगे। समय नाजीन, आपको पता है कि ये गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों के मौसम में हम सिर्फ मौसम को एंजॉय करते हैं लेकिन बाकी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। कानून कायदे का हमें एहतराम करना चाहिए, ये मुहर्रम का दिन है, मुहर्रम का महीना है, हमें इसका भी एहतराम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। तो शाह साहब, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं।
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ فور صاحب آپ کو, آپ کی ٹیم کو, آپ کے لسنر اور ناظرین جتنے بھی ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم. آپ نے بہت اچھا انٹرو میں کہا ہے کہ محرم کا احترام کرنا چاہیے. پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے محرم کیا ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن پہلے موسم کے بارے میں جیسے آپ نے پوچھا, جیسے ہم شروع کرتے ہیں, خدا کا شکر ہے کہ جیسے پچھلے ہفتے گرمی پڑی اس طرح کی گرمی اب نہیں ہے, بلکہ مری جیسا موسم ہو گیا, ہمارا موسم واپس آ گیا. پورے یورپ میں اتنی گرمی پڑی ہے کہ اسپین میں ایک دن میں 325 سے زائد انسانوں نے جان گوائی, اور اسی طرح فرانس, جرمنی اور دوسرے ممالک میں بھی بے شمار بچے اور بوڑھوں کی جانیں جو ہے وہ ضائع گئی. تو لہٰذا اللہ نے کچھ ہمارے اوپر تھوڑی سی رحمت کی, اور یہاں پہ موسم جو ہے وہ اتنا گرم نہیں ہوا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں زیادہ تقریباً 90% گھروں میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے, اور ایئر کنڈیشن نہ ہونے کی وجہ سے گرمائش بہت زیادہ گھروں میں اور فلائٹس میں ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ پانی پینے کی ضرورت تھی, اور وہ ہمارے ملک میں بھی اتنا زیادہ پانی پینے کا نہیں تھا. تو خطرہ بڑھ رہا تھا کہ اگر گرمی زیادہ ہوگی تو پانی کی زیادہ ضرورت ہوگی, اور وہ ہو سکتا ہے کہ پوری نہ ہو سکے. لیکن اللہ کی رحمت ہے, اس موسم میں بھی آپ باہر نکل سکتے ہیں. ابھی بھی باہر کبھی بادل آ جاتے ہیں, کبھی دھوپ آ جاتی ہے, موسم پھر بھی پلیزنٹ ہے, اچھا موسم ہے. آپ باہر نکلے, گھومے پھرے, بچوں کو لے کے باہر جائیں, اور خصوصی طور پہ آپ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جب آپ فیون میں جاتے ہیں, اڈنسے میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ اس جنگلات کے آپ ذرا تھوڑی سی خیال رکھیں کہ وہاں پہ جیسے ہم وہ پاکستان میں کہتے تھے نا بمبو کتا پنجابی میں, اور سنڈی ہے ایسی جس سے زیادہ تر یہ جو ہے اپنا تتلیاں بنتی ہیں, وہ بعد میں اپنے آپ کو کنورٹ کر لیتی ہے. لیکن وہ بمبو کتا جس کو ہم پنجابی میں کہتے تھے, وہ بہت ہی خطرناک ہوتا تھا کہ جسم کے کسی حصے پہ لگ جائے تو وہاں پہ وہ سرخ دانے نکل آتے تھے, اور برننگ اتنی زیادہ ہوتی تھی, خارش, اور اس کے ساتھ

0: अमीना जो है ये सिर्फ माह मुहर्रम नहीं, ये गमे रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इस महीने में आपके खानदान को जो लोगों ने शहीद किया और उसका वाकया जो करबला में पेश हुआ, इसकी हम आपको ये याद होगा कि आपने रेडियो और दूसरे मीडिया पे भी सुना होगा कि रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबा के ख्वाब में आए और उन्होंने कहा कि मैं बहुत गमजदा हूँ करबला के वाकया में, और फिर वो उन्होंने अपनी एक जोजा को भी मिले और उनको भी ख्वाब में ये कहा कि मैं ये जो खाक मेरे सर में और अस्तफार सबला और ये जो मैं परेशान हूँ, ये मैं करबला के वाकया से परेशान हूँ, और वो गमजदा थे। तो इसलिए ये गम का महीना है, ये सब मुसलमानों का महीना है, ये किसी एक फिरके का महीना नहीं। और फिरके तो जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के पहले ही इस पारे सूरत अल बकरा में मना फरमा दिया है कि आप फिरकों में मत बैठे। दूसरी कौम है जो आपसे पहले जितनी भी कौमें गुजरी हैं, जितने भी 1,24,000 कमो पेश पैगम्बर और रसूल यहाँ पे आए हैं, 355 से ज्यादा रसूल आए, और उन सब ने जो है वो फिरकों में बट के और फिर अपने दीन से हट गए। इसी तरीके से अब हम भी यही साफ कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। तो इनसे थोड़ा सा हमें यह भी सोचना चाहिए कि कल जब हम क्यामत वाले दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे की तरफ देखेंगे कि वो उनका झंडा कहाँ लगा हुआ है, और उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो हम किस मुंह से जाएंगे कि जब उनके नवासों को, उनकी बीबियों को, उनके छोटे छोटे 6-6 माह के बच्चों को हम लोगों ने ही, हम उस वक्त जो मुसलमान थे, इन्होंने ही शहीद किया था, और वो मुनाफिकीन में थे या जिससे भी थे, ये तो अल्लाह ने डिसाइड करना। लेकिन जो लोग अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते वो मुर्तद हो जाते हैं, और जो मुर्तद होता है वो काफिर से भी बदतर होता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे की तरफ इस नगाह से देख सकेंगे कि आज हम क्या कर रहे हैं और कल हम क्या, जो आज बोएंगे वो कल काटेंगे। तो लिहाजा मकसद ये है कि हमें गमे हुसैन और गमे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जरूर शामिल होना चाहिए। और आपको पता है कि इस्लाम जिंदा ही होता है करबला के बाद, और आज जो जुल्म हो रहा है दुनिया भर में इसकी वजूहत क्या है, इसी पे तो करबला में ये हुआ था कि आप एक अल्लाह को माने, एक आखिरी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखे और उनकी हदीस और उनकी सुन्नत पे कामल रहे। तो राजा साहब, मेरा ख्याल में कि हमारे लोग काफी यार पढ़े लिखे हैं, वो समझदार है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा इस घमंड में रहते हैं कि शायद हमारी दौलत या हमारी चीजें जो है ये हमें बख्शिश में काम आ जाएंगी। उनको चाहिए कि अपने अपने मसाजिद से रिजू करें और इस पे सवाल करें, क्योंकि सवाल करना ये इनका हक है। इस्लाम जो है वो इजाजत देता है डिस्कवरी की, और डिस्कवर करो और सवाल हो जवाब करो ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा इल्म आए, क्योंकि अगर आप सिर्फ सुनी सुनाई बात पे अमल करेंगे तो इससे जो है वो आप अपने ऊपर जुल्म करेंगे। जी राजा साहब।
1: शाह साहब आपने बजा फरमाया। शाह साहब, हम जिन ममालिक में रहते हैं उन ममालिक में क्या हमें उनके कानून का एहतराम करने में हमें इस्लाम ने मना किया है?
0: नहीं जी, बिल्कुल नहीं किया, बल्कि इस्लाम इतने वाजह अल्फाज में कहता है कि अगर आपको उस मुल्क के कोई आयन या वहां के कोई चीज से आपको तंगश है तो आप वहां से हिजरत कर जाए। ये पूरी दुनिया अल्लाह की है, और आप किसी और मुल्क में चले जाए, हिजरत कर जाए, ये हिजरत का पैगाम है। बाजू का ये होता है कि जालिम की हुकूमत से जो है वो कुफर के हुकूमत जो है, जो कुफर काफर होते हैं उनकी हुकूमत में अगर सुलह सफाई से आप रह सकते हैं, अमन से रह सकते हैं, तो वो आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर जालिम हुक्मरान है तो आप वहां से हिजरत कर जाने का आपको हुक्म है। तो यहाँ पे इस मुल्क के अंदर आपने बात किया तो यहाँ पे हमें हर चीज की सहूलत है, लेकिन हमने कुछ चीजों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। जैसे कि इस वक्त बहुत हाईलाइट हो रहा है ये जो फुटबॉल का फैंस जो कत्ल हुआ है कोपनहेगन में, इस लांगे ब्रो के नीचे जहाँ पे मैं

0: वो फेस्टिवल भी और दूसरे बहुत ज्यादा फेस्टिवल लगते हैं, बल्कि लोग समर में वहां पे बात वगैरह भी करते हैं। वहां पे जो कोई एक हफ्ता पहले नॉर्वे का और एक अफ्रीकन मुल्क का फुटबॉल मैच था और बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, तो उसके अंदर कुछ स्वीडिश लोग जो थे वो बैठे हुए थे और वो नॉर्वे की जीत पे नाराबाजी कर रहे थे। तो वहां पे एक अफ्रीकन जो डेनमार्क का रिहायशी है और पहले भी वो बहुत सारे केसों में जेल काट चुका है और कत्ल के भी इल्जाम में वो जेल काट चुका है, उसने उस स्वीडिश 32 साल स्वीडिश को जो है वो इतना मारा और उसके साथी को कि वो जो 32 साल था वो जिंदगी खो बैठा है। तो हम सब लोग मैंने आज भी और कल भी लिखा है कि भाई हम सब पाकिस्तानी हम लोग कम्युनिटी जो है यहाँ पे हम उनके बराबर के गम में शरीक हैं और हमें ये नहीं चाहिए ऐसे करना। लेकिन ये इसके पीछे जो कवानीन बनाए गए हैं, जो इसके पीछे काले कवानीन हैं, उनको खत्म करना चाहिए। इसके ऊपर डायलॉग होना बहुत जरूरी है। मैंने लास्ट लुक रास्मुसन और मॉडर्न मेसन स्मिथ की जो अपनी
1: शाह साहब एक सवाल उठता है कि कोई देखे ना जहां जुर्म होगा वहां तो कानून शाह साहब हरकत में आएगा ना, जब कानून हरकत में आता है तो उसे तो हम कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कहते ना।
0: जी ठीक है, लेकिन वो आदमी जो है वो अभी तक यहाँ पे आजाद है और पुलिस ने कहा है कि अगर आप इन लोगों को देखे इसको
1: देखे। लेकिन शाह साहब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं हमेशा आप कानून की बात करते हैं, यहाँ तो कानून का एहतराम किया जाता है, जो भी कानून की इज्जत में आ जाता है उसका बचना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ी सी डील मिल जाती है। तो शाह साहब मौसम की तरफ आते हैं, अपने सियासत की तरफ आते हैं। शाह साहब आप बताएं, आपका ज़िंदगी का बहुत तजर्बा है, क्या सियासत जो है अपने नाम के लिए की जाती है या सियासत लोगों के लिए बेहतरी के लिए की जाती है?
0: ये अपने और अपनी फैमिली के लिए यहाँ सियासत की जाती है, यहाँ लोगों के लिए आवाम के लिए नहीं। यहाँ पे आप वोट लेते हैं दोस्ती यारी के नाम पे और फैमिली बैकग्राउंड के नाम पे, लेकिन आप जैसे कि ये जो वाकया मैं जिसको बयान कर रहा था, ये पांच मंजर जो है ये इसी चीज की हमारी नेगलेसी की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से ऐसे लोग इस मुल्क के अंदर आ गए। आप ये देखेंगे जो मैंने आज उनको वाजह तौर पे लिखा है, मैंने आपको कापियां भी उसकी भेजी हैं कि देखें अगर आपने ये कानून जो है अगर ये चेंज ना किए होते तो आज हमारे पढ़े लिखे फैमिलीज हमारी जो हम लोग यहाँ सेटल्ड हैं हमारे बीवी बच्चे जो हैं वो बजाय दूसरे मुल्कों में दूसरी जगह पे या पाकिस्तान में जिलों पार होने के अगर वो यहाँ पे आ जाते तो आज बेहतर तरीके से ये मुल्क चलता। लेकिन आप लोगों ने दूसरे मुल्कों का मजाक उड़ाया कि ये
1: तो
0: मुसलमान
1: इस पर कितने सियासतदान लिख रहे हैं, जो बात आप जिसका जिक्र कर रहे हैं इस पर कितने सियासतदान कम्यून्स के मेंबर, रीजन के मेंबर, पार्लियामेंट के मेंबर कितने लिख रहे हैं? तो शाह साहब जब कानून सख्त होते हैं तो फिर पार्टियां उस चीज़ को उठाती हैं, लोग उनकी जो फेवर में होते हैं उनकी वोटों की तादाद बढ़ जाती है, कम्यून में बढ़ जाती है, पार्लियामेंट में बढ़ जाती है। यहाँ तो जमहूरियत है, जिसके पास अक्सरियत होगी वो अपने कानून मंजूर करवा लेगा।
0: देखिए जी, मैंने आपको पहले कहा है कि मुझे अपने सियासतदानों से जो यंग सियासतदान है बेशक वो मुझे जो बुरा भला जो मर्जी के मुझसे उनसे ये उम्मीद नहीं कि वो इस तरह की बात जो है वो हाईलाइट करेंगे। वो ये तो कहते हैं कि हमने अखबारों में लिख दिया, हमने फलानी जगह कर दिया। क्या जो इलेक्टेड है क्या उन्होंने अभी तक कोई इस तरह की कॉन्फ्रेंस या इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जबान में या अपने रेडियो पे की है? कोई आपके रेडियो पे एक हफ्ता हो गया इस तरह के वाकयात, बल्कि इससे पहले के जो कानून सख्त बने हैं, जो डिपोर्टेशन के कानून बने हैं कि आप गैर मुल्कियों को थोड़ी सी जरा पे बात, क्या उन्होंने इसके ऊपर कोई बात की है? अब ये कहना कि जी हमारे कोई इलेक्टेड काउंसलर नहीं, हमारे रिजून में भी इलेक्टेड काउंसलर है, हमारे कोपनहेगन में भी इलेक्टेड काउंसलर है, क्या इन लोगों ने आके इन सियासतदानों ने कोई ऐसी बात या ऐसे लॉ फोर्सेस जो है वो लोगों के सामने पेश की है? और क्या उन्होंने इनविटेशन आपको या हम लोगों या दूसरे जो सियासतदान है उनको बुलाया या ऐसे सोशल वर्कर्स को बुलाया उस गैदरिंग के अंदर, जहां डैनिश बैठे हो, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग बैठे हों, डैनिश फिल्के पार्टी के लोग बैठे हों, मॉडरेट के बैठे हों, डेनमार्क डेमोक्रेट्स के लोग बैठे हों, सोशल डेमोक्रेट के सब पार्टी के लोग नुमाइंदे बैठे हों, और उनके सामने अपनी फौसले भेजें, उनके सामने अपना नुकता वाजिया करें। क्या कोई है ऐसी हिम्मत करने वाला? हालांकि यहाँ पे इन लोगों को हॉल फ्री मिलते हैं, इनको हर जगह फ्री हॉल मिलते हैं, जैसे कि कल इन्होंने मैंगो फेस्टिवल लगाया था, ऐसी जगह इनको फ्री मिलती है, वहां पे ये लोगों को अच्छे मौसम में बुलाकर गैदरिंग कर सकते हैं और लोगों की राय ले सकते हैं कि हम में कौन सी फॉल्ट्स हैं वो आप गिला करें, और हम में जो तुम में जो फॉल्ट्स हैं, आपके कानून में जो फॉल्ट्स हैं, इसके ऊपर वो चर्चा हो, तो फिर बात होती है। ये कहना कि फलाना वजीर मेरा यार है, फलाना मेरे इलाके का है, फलाना मैं उससे बहुत बात करता हूँ, मैं फलाने को जाता हूँ, मैं फलाने को बहुत अरसे से जानता हूँ, ये सब गलत बातें हैं, ये रूमर्स हैं, ये सिर्फ अपना कद काट बढ़ाने के लिए लोग बातें करते हैं। जो असल अगर ये चीजें वाजह तौर पर पहुंच जाती कि यहाँ के कानून में क्या क्या शिके हैं, यहाँ के कानून जो बनाए गए हैं वो कितने गलत हैं, तो आज इस तरह की चीजें हमें सुनने में ना आती। आज जो इस्लाम मुखालिफ लोग हैं, जो इस्लाम को सरे हम बुरा भला कह रहे हैं, बल्कि बैनर्स पे लिख लिख के बुरा कह रहे हैं, तो मैं शर्मिंदा हूँ अपने यंगस्टर से कि क्या इन्होंने कोई बातें की नहीं। हर कोई जो है वो दूसरे मुल्क के ऊपर, दूसरे के ऊपर चढ़ाई करता है, वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करते हैं, वो दूसरे ममालिक के ऊपर चढ़ाई करते हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर जहां हम रह रहे हैं, जहां हमारी अब चौथी जनरेशन, राजा साहब पहली दूसरी तीसरी नहीं, अब चौथी जनरेशन तैयार हो रही है इस मुल्क के अंदर हमारी, और उस जनरेशन के लिए क्या हमने तीसरी और चौथी जनरेशन के लिए कुछ किया? नहीं, हमने एक चीज छोड़ दी है कि हमारे बच्चे बहुत पढ़ गए हैं, वो डैनिश बोलते हैं, क्या उनको डैनिश कानून का पता है? क्या उनको हमारी प्रॉब्लम्स का पता है कि हम कैसे रह रहे हैं? क्या उनको इस बात का ख्याल है कि हमारी बूढ़ी माए, बेवा माए या दूसरे जो है हैंडीकैप फल्क हैं, उनकी उनकी
1: तो सब एक सवाल पैदा होता है कि हम यहाँ के कानून को हर वक्त चैलेंज क्यों करते हैं, हम अपनी अदात को क्यों नहीं ठीक करते? आप काफी सीनियर है और आपने देखा होगा कि शुरू में जब आप जहाज़ों पर सफ़र करते थे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते थे, तो आपको इमिग्रेशन में कितनी सहूलियात थी, शॉपिंग सेंटर पे कितनी सहूलियात थी, आपकी चेकिंग बिल्कुल नॉर्मल होती थी। उस वक्त एक ज़माना था आपके पासपोर्ट पे बच्चे लिखे होते थे, तो आप बगैर पासपोर्ट के बच्चों को जो है ना अपने पासपोर्ट पर एक दूसरे मुल्क में ले जा सकते थे, कोई रोक टोक नहीं। तो शाह साहब, जब हमने गलत काम किए, कानून को जगह जगह तोड़ा, तो फिर सख्तियां होगी, तो अब हर चीज़ पर हम चीखते हैं और हर चीज़ को हम चैलेंज करना शुरू कर देते हैं।
0: ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये झूठ झूठ की अलामत जो है ना, झूठ बोलना, ये शैतानी वसवसे पैदा करना, गबियत करना, अपने आप को ऊंचा पैदा करना, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। हमने अपनी औरतों को एजुकेट नहीं किया, हमने उनको यहाँ के कानून नहीं सिखाए, हमने यहाँ पे कोई ऐसी थिंक टैंक या ऐसी कमेटियां नहीं बनाई जो इस तरह के, जो मियां बीवी में अगर अलहदगी हो जाती है तो उनको कॉम्प्रोमाइज कैसे कराया जाए, उनको हालात से कैसे ठीक किया जाए। तो ये जो चीजें हैं, सबसे ज्यादा आप ये देखें कि यहाँ पे हिंदू भी रह रहे हैं, दूसरे कौमें भी रह रही हैं, उनकी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं जितनी हम मुसलमानों ने यहाँ पे क्रिएट की है। और सबसे ज्यादा जो है चंद एक मुसलमान, ये किस वजह से, ये कानून की वजह से, कानून के ऊपर किससे बोलना है, ये उनसे उन्होंने बोलना है जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हम इलेक्ट करते हैं, जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं कि ये लोग जाके इन इन खामियों के ऊपर, जो कानून के अंदर खामियां है उनके ऊपर बोलेंगे, लेकिन वो यस सर करने वाली कौम हमें उन पे एतबार कर लेते हैं, और उन्हीं के एतबार में आज जो हम जुड़से बैठे हुए हैं, आज जो हमें प्रॉब्लम्स हैं, हमारे फैमिलीज को यहाँ इकट्ठे करने पे हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, देखिए जो नए फ्लूटिंग आ रही है, जो नए यहाँ पे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, उनको और उनकी फैमिलीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस डेनमार्क के अंदर सेटल होने में, लेकिन हम लोग जो हैं, जो यहाँ पे
1: बात आप कर रहे थे गैदरिंग की, शाह साहब जो प्रॉब्लम्स की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, तो शाह साहब, एक नेचुरल गैदरिंग होती है, जो भी फेस्टिवल होते हैं गैदरिंग के लिए होते हैं, तो हम क्यों नहीं सियासतदानों को बुलाते और आप वाली बात वहाँ डिबेट होनी चाहिए, अपने मसाइल डिस्कस होने चाहिए, जमहूरी तरीके से होने चाहिए, लड़ाई की शक्ल में नहीं होने चाहिए, प्यार मोहब्बत की शक्ल में होने चाहिए। शाह साहब, ये काम हम करना नहीं चाहते। हमें फिक्र होती है पाकिस्तान की सियासत की कि मैं बड़ा जो है वो 30 मार खान हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो शाह साहब, यहाँ रहते हुए इन मुल्कों की हम सियासत करते नहीं है शाह साहब, हम सिर्फ डिमांड डिमांड डिमांड डिमांड डिमांड, उसके अलावा हमारे पास कुछ है शाह साहब?
0: नहीं, बिल्कुल आपने सही बात की है। कल मैं अपनी फैमिली और बच्चों के साथ गया हुआ था, छोटे आए हुए थे सारे, तो उनको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है, तो उनको साथ लेके गया था मैं। लेकिन मुझे अफसोस पड़ा हुआ कि वहां पे भी, जैसे आपने बात की, कुछ सियासतदान वहां पे घूम फिर रहे थे, लेकिन वो इस तरह घूम फिर रहे थे कि सिर्फ फोटो सेशन की नजर में, कोई कोई किसी को अपने ख्यालात के बारे में ही बता रहा था, कोई किसी को कोई अपने ये जो याददाश्त होती है कि मैं आपके लिए क्या करूंगा क्या नहीं, वो नहीं बता रहे थे, कोई ऐसे पंफलेट नहीं तकसीम किए जा रहे थे कि भाई आपको अगर कोई प्रॉब्लम है किसी चीज की भी, तो रिहाइश की प्रॉब्लम है या आपको बच्चों की प्रॉब्लम है या आपको स्कूल मैटर्स या किसी चीज की भी आपको एक्सेट्रा एक्सेट्रा जरूरत है, तो आए हम आपसे खुल के बात करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि ये लोग सिर्फ फोटो सेशन, चंद एक बंदों के साथ खड़े होकर फोटो सेशन, किसी को सलाम करने में भी बड़ी रख रखाव रख रहे थे, दूर से हेलो करके जा रहे थे। तो ये एक एक वो अकड़पन है जो अपने आप को चदराहट में रखता है। ये इसीलिए लोगों के लोग जो हैं, मैं आपको ये एक चीज वाजह कर रहा हूँ कि मुझे जो नेक्स्ट इलेक्शन नजर आ रहे हैं उसमें हमारे पाकिस्तानी मेजोरिटी जो है वो मेरा ख्याल में डेंचो को वोट डालेंगे या वो दूसरे किसी और बंदे को, नेशनैलिटी को डाल देंगे, अपने लोगों को वो वोट नहीं डालेंगे। क्योंकि अब 55 साल से ऊपर हमने इनको आजमा लिया है, ये सिवाय झूठ और अपने खानदानी रवायात को कायम रखने के अलावा इनके अंदर कोई चीज नहीं। ये मकर करते हैं और मकर करने वाले लोग जो होते हैं उनके ऊपर अल्लाह की रहमत नहीं आती। आप खादम हैं, आपने वोट लिया, आपने आजी दिखाई, आप लोगों ने अपना पैसा खर्च किया हर एक चीज की और आप इलेक्ट हुए, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आप लोगों से आकर बात करें, अपनी चौधार ना करें कि मैं काउंसलर, काउंसलर इज नथिंग। आपकी जो वैल्यूज हैं वो हमें पता है, आपको घोड़े बात नहीं करने देते, आप कालों के सामने अकड़ कर चलते हैं। माजद के साथ मैं इनके इनसे नहीं डरता, क्योंकि मैं इनको पीछे से जानता हूं कि ये क्या है, मैं भी क्या था। हम लोग झूठ झूठ का सहारा ले रहे हैं, हम लोग अपनी अपनी जो गबीयत है, हम जो बातें करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, लेकिन ये जो आज हालात पैदा हो गए हैं ये इतने गंभीर हैं कि हमारे साथियों को नहीं पता। आप ये देखिए कि हमने 2017 से डेली बेसिस पे, एक नहीं कि वीकली हम बात करते हो, हमने डेली बेसिस पे यहाँ कहा था कि ये जो उबर है इसको मत तंग करो, आने दो, अपने वोमेनशिप बचाओ, ये पुराना कानून जो है टैक्सियों का इसको बचाओ। तो लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा जी शाह साहब पागल है, ये अपना क्या नाम है राजा गफूर पागल है जो शाह साहब को हर वक्त रेडियो पे ले आता है, ये बातें करता है। अब 500-600 टैक्सी जो है ये वेटनाम की आके यहाँ पे खड़ी हो गई है, अब वो जो है वो ड्राइवर भर्ती कर रहे हैं, वो ड्राइवर चलाएंगे, वोमेनशिप किधर गई, कहाँ गए आपकी वोमेन, जो एक सेल्स कैप रह गई है वो भी खत्म हो जाएगी। क्यों कि अब लोगों ने, लोगों को अपनी परमानेंट तनख्वाह मिलेगी, वो उससे ज्यादा फायदा उठाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ रही हैं, टेस्ला ने और चाइनीज ने ऐसी गाड़ियां डेनमार्क में और यूरोप में भेज दी हैं कि जो बगैर ड्राइवर के आपको मुहैया होंगी, आपको विद नो लिमिट, कोई टाइम नहीं होगा, तो आपके घर के सामने टैक्सी आ जाएगी, आपके लिए सेफ होगी, आप उसको आपने पहले ही एड्रेस फीड कर दिया होगा, वो आपको लेके आपके जहां आपने जाना है वहां आपको पहुंचा देगी, वो आपको ड्राइवर से ज्यादा सेफ आप उसमें इसलिए होंगे कि वो आपको अम्बायन यानी कि उल्टे सीधे रास्तों में लेके नहीं जाएंगे, आपको ड्राइवर के साथ तकरार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने पेमेंट कर दी, जो पेमेंट आपने कर दी हुई है उसी से बेशक वहां पे गाड़ी आसान चल रही है, तेज चल रही है, ट्रैफिक बेशुमार है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी कि अगर आपने 150 करोड़ दिया है तो वो 150 करोड़ में ही आपको उस जगह पे पहुंचाएगी। तो अब भाई ये नुकसान किसका हुआ? ये नुकसान उन लोगों ने करवाया है कि जिनके जेहन में ये बात नहीं आ रही थी कि भाई ये फ्यूचर हमारा कितना डिस्टर्ब होगा, हम ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, हमने इंसानियत के यहाँ पे लोगों को जो काम करके ये कर रहे थे उनके लिए क्या कर दिया। अब वो कंपनी जो है वो 3,000 के करीब जो है वो ड्राइवर जो रखने जा रही है, और मेरा तो यंगस्टर से यही मशवरा है कि अपनी गाड़ियां दे दें और इस तरह काम करें, कम से कम आपको फिर ये पैंगे मिलेंगे, आपको बीमारी के पैसे मिलेंगे, आपको इंश्योरेंस मिलेगी, आपके इंश्योरेंस होगी, आपके सब कुछ अखराजात जो वो कंपनी उठाएगी, और आप मजे से 2 महीने की छुट्टियां करें, पाकिस्तान में जाएं, बच्चों के साथ अमेरिका में जाएं, दुनिया भर में जाएं, आप लूट मार करें, जो मर्जी करें, वो आपके लिए फायदा। लेकिन ये अच्छा है, लेकिन जब ये दूसरी बजाय ड्राइवर की गाड़ियां भी आ जाएंगी आपके मुकाबले में, तो आप अपना खर्चा पूरा नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप 2 डिफरेंट कल्चर में रह रहे हैं, आप डेनिश कल्चर में रह रहे हैं और पाकिस्तानी कल्चर में रह रहे हैं, आपने दोनों कल्चरों का जो है वो को डिफेंस करना है और ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो राजा साहब ये जितनी भी चीजें हैं ये कम्यूनों में डिस्कस करने वाली है कि हमारे जो यहाँ के जो हमारे
1: सवाल है, आप माशाल्लाह हर चीज को समझते हैं। शाह साहब फल खाए जाते हैं, फल अच्छे होते हैं, बस फल बड़े पॉपुलर होते हैं। डेनमार्क में भी बहुत सारी दुनिया का हर फल यहाँ मिलता है, हर दुकान पे मिलता है, हर मार्केट में मिलता है। तो शाह साहब मेले बड़ी अच्छी चीज़ हैं, गैदरिंग होनी चाहिए, आउटिंग होनी चाहिए, लेकिन मेलों का नाम जो है वो जगह मुफ्त ली जाए और वहाँ फंड रेजिंग का काम किया जाए, और ये भी एक सवालिया निशान है। तो शाह साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आम सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, दुकानों में खरीदा भी जाता है, जगह जहाँ भी जाते हैं खरीदते हैं, लेकिन शाह साहब ये कोई मुकद्दस फल है?
0: मैं इस चीज को बिल्कुल कंडेम करता हूँ कि अगर आपने फंड रेजिंग करनी है, कुछ करना है, तो आपके लिए जिस मुल्क में आप रह रहे हैं इस मुल्क के अंदर ऐसे कानून हैं जो आपको इजाजत देते हैं। और इसी तरीके से हमने जब यहाँ पे शुरू शुरू में मुख्तलिफ कल्चर सेंटर या मस्जिद बनाई तो गवर्नमेंट ने लोगों को सपोर्ट किया, जगह दी, तो यहाँ पे तो हर चीज जो है वो गवर्नमेंट के जरिए, जहाँ आप टैक्स पेयर हैं और आप सही तरीके से रह रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आप अप्लाई करें, आप चर्च मिनिस्ट्री को, कल्चर मिनिस्ट्री को आप अप्लाई करें, आपको हर चीज जो है बाय लॉ यहाँ पे मिल जाती है और ये देते हैं। लेकिन मसला ये है कि क्या उसके अंदर मेरा नाम होगा या नहीं होगा, ये मसला सबसे बड़ा राजा साहब कि उसके अंदर क्या ये तो कीर्शा के कल्चर सेंटर है या इसके अंदर कौन बड़ा बैठा हुआ है, क्या इसके अंदर तो कीर्शा का हाथ है या नहीं है, ये सबसे बड़ा मसला है। आप देखेंगे यहाँ पे 7 मस्जिदों की यूनियन बनी हुई है, वो कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे DMU बनी हुई है, वो कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे DMC बनी हुई है, वो कुछ नहीं कर रहे। तो जब आप कुछ कर नहीं रहे और यहाँ पे इस्लाम के बारे में और दूसरे कल्चर के बारे में, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको जब कानून का पता नहीं तो आप कानून वालों से बात करें, ये नहीं कि आपके बच्चे पढ़ लिखे हैं जी, वो जी हमसे ज्यादा तो कौन कौन नहीं जानता। बात यह है कि यहाँ सब डेंचों के बच्चे पढ़े लिखे हैं, लेकिन सबके बच्चे जो हैं वो फलके थिंग में नहीं बैठे हुए, सबके बच्चे जो हैं वो फिजकेरी उल जो है फलके थिंग के वहां नहीं बैठे, वहां सबके बच्चे जो है वो वकील नहीं है। तो इसलिए जब भी कोई चीज होती है तो वो मुख्तलिफ वकीलों के पास जाना पड़ता है। अभी आप एक कोई आपके प्रॉब्लम आ जाती है तो आप एक हर वकील के पास नहीं जा सकते, आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर आपको प्रॉब्लम है आपने उस वकील को ढूंढना है और उस काबिलियत के वकील को ढूंढना है जो आपका मसला हल कर सके। तो यहाँ पे जो मसाइल है हमने इकट्ठे कर लिए, इसको जब तक आप पब्लिक को इकट्ठा करके उनके मीनिंग्स नहीं लेंगे, बगैर लड़ाई झगड़े के, बगैर फसाद किए, बगैर कब्जियत किए, आप इन चीजों को समझ नहीं सकेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को जो है वो रहने की इजाजत हो जाएगी, बाकी जितने भी आगे पीछे घूमने फिरने वाले लोग हैं इनको ये किसी ना किसी बहाने से ये बाहर आउट कर देंगे। अगर आप आज की अखबारें देखें, अगर आप देखें तो अब मॉडर्न मैसेज में जो है डेथ फलके पार्टी का, वो कह रहा है कि उड़ेनी को तो हर सूरत बाहर निकला है, तो हो सकता है कि मैं जो है इससे बात करूं लास्ट यूके से और मैं वजीर आजम बन जाऊं इस मुल्क का। वो अपने ख्याल का आधार कर रहा है, पहले वो चाहे यही कहता था कि मैं इसको इनको खा जाऊंगा, लेकिन अब वो कहता है कि मैं इनके साथ मिलके तो मैं ऐसी हुकूमत बनाऊं जिससे फॉरनर्स को इस मुल्क में इतनी तकलीफ दी जाए कि वो खुद ही छोड़ के चले जाए, ना छोड़ के जाए तो हम उनको बाहर कर देंगे इस मुल्क से। तो राजा साहब हालात जो है इसकी जिम्मेदारी हमारे अपने सियासतदानों पे हो रही है। हमें वो सुन रहे होंगे, उनको तकलीफ होगी कि शाह साहब क्या बातें करें, लेकिन ये उनका हक बनता है, ये उनके उनका मंशूर है, ये उनके उनका फराइज है, उनके फराइज में ये शामिल है कि वो आए बाहर निकले और आकर अवाम जिनसे वो जी मेरी फैमिली जी मैं जर्मनी में छुट्टियां गुजारने जा रहा हूँ, जी मैं लाहौर में छुट्टियां गुजारने जा रहा हूँ, मैं फलाने भाई क्या जब वोट डाले थे तो तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें वोट डाले थे, तुम्हें तो लोगों ने वोट डाले थे, तो तुम उन लोगों की प्रॉब्लम को पहले सुनो, उनका मसाइल हल करो, उनके लिए जो इस वक्त इतने सख्त कानून बन चुके हैं।
1: शाह साहब आपकी आखिरी बात करते हैं, फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको लेंगे। शाह साहब यहाँ लोग कहते हैं ये बातें लोग करते रहते हैं इसी तरह, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सियासतदान का काम है सियासत करना, जब यहाँ की सियासत जो है वो की ही नहीं जाती, बंद कमरों में खाली गप्पे मारी जाती हैं, लेक्चर जाड़े जाते हैं, तो शाह साहब इससे कभी भी तब्दीली नहीं होगी। शाह साहब आप बहुत शुक्रिया, आपको दूसरे हिस्से में लेंगे आपको सामान्य नाजरीन। ये थे शाह साहब, इनकी आप बात सुन रहे थे, अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम